0: माही, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। माही, पिछले 15 दिन आज हर दिन हर पल हर वेले हर कड़ी तू मेरी अखा दे सामने घूमती रहती है। ना चाहते हुए मैं तेरे बारे ही सोचता रहा। मेरी भुख, मेरी नींद, मेरा चैन सब कुछ तेरे नाल चला गया।
1: माही
0: माही, मैं माही, मैं सचमुच तेनू बहुत प्यार करदा। माही माही, मैं तेनू बहुत प्यार कर...

0: ओ यार, अल्कोहल लाइसेंस अप्लाई करना हेडेक बन गया।
1: स्ट्रेस ना ले, परविंदर डेविस लॉ है ना, न्यू लाइसेंस रिन्यूअल्स ते सारे अल्कोहल लाइसेंसिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज दी प्रॉपर हैंडलिंग।
0: इवेंट और टेम्पररी अल्कोहल लाइसेंस भी?
1: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, इम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ, अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 6421214091।
2: मैं क्या जी, मुंडे दा व्याह तरिया ते तुसी सोचा विच घूमी जांदे हो?
3: भाई मैं सोच रहा सी के व्याह ते डेकोरेशन ते एंटरटेनमेंट दा प्रबंध किवें करिए।
2: इस दी जिम्मेवारी असी देवांगे स्टाइल एंड इवेंट्स नो, जो कि इवेंट मैनेजमेंट ते माहिर ने। ए बहुत ही प्रोफेशनल ने ते सारियां ही सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने, जिवें कि घर जां हॉल दी डेकोरेशन, भंगड़े दी टीम, डीजे, लाइव ढोल, जागो, डेकोरेशन हायर, मेहंदी नाइट अते मच मोर। मैं था लकी दा फोन नंबर भी नोट कीता होया है, 0219944 58 जा फिर 0921295 63।
4: स्टाइल एंड जेड इवेंट्स, फंक्शन कोई भी होवे उसनु यादगारी बनाउन दी जिम्मेवारी साडी।

0: जिंदगी दा सच है, एक दिन हर किसी नूं इस दुनिया तो रुखसत होना हुंदा है।
1: पर उस वेले सब तो जरूरी हुंदा है इज्जत मर्यादा ते पूरी सेवा दे नाल अंतिम विदाई।
0: ऑकलैंड विच सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज लेके आए ने पंजाबी फ्यूनरल पैकेजेस, जिथे ट्रांसफर तो लेके एम्बामिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, क्रीमेशन ते डेथ सर्टिफिकेट तक सारी जिम्मेदारी ओ संभालदे ने। टोटल पैकेज सिर्फ $4,299 तो शुरू।
2: उन्हें संपर्क करो शैलेन सिंह नो
3: 0272-929-776। सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज अंतिम सफर विच पूरी
4: पापा टोयोटा फ्लैट बुश पापा कूरा विच अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस तो बाद हुन DH सुपरमार्केट आ गया है हेंडरसन विच। हुन तुहाडियां रोज दियां जरूरतां होण या इंडियन फ्लेवर्स दी क्रेविंग, फ्रेश इंडियन वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस, ग्रोसरी ते डेली एसेंशियल्स सब कुछ मिलेगा 21 छत थल्ले। ओपनिंग दे मौके ते मिल रहे ने स्पेशल ऑफर्स ते ग्रेट प्राइसेस। हुन शॉपिंग होवेगी होर आसान क्योंकि तुहाडा अपना इंडियन ग्रोसरी स्टोर DH सुपरमार्केट हुन तुहाडे होर भी नेड़े है। DH सुपरमार्केट नंबर 5 मोजल एव हेंडरसन, इना दी नवी ब्रांच खुल चुकी है।
5: बड़ी रीत सी कि साडे भी घर रौनकां होण, साडे भी वेड़े किलकारियां होण,
6: ताही आपा चले आ आयुर्वेदा हेल्थ क्लिनिक जिथे आयुर्वेदिक तरीके नाल पूरी तरह प्रोफेशनल अप्रोच है ते तुहानू इमोशनल सपोर्ट भी दिंदे ने।
5: अज ही कॉल करो डॉक्टर प्रिया नू जिन्हां नू है 33 साल दा तजुर्बा। हुन दुनिया दे किसी भी कोने च बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन लो ते ट्रीटमेंट पाओ। ज्यादा जानकारी लई विजिट करो www.drpriaayurvedic.com। ऑनलाइन कंसल्टेशन लई व्हाट्सएप करो 0212530961 या ईमेल करो priya@ayurvedic.co.nz।
6: हजार तो वध लोगों की जिंदगी नु रोशन किया, तुसी भी उनादा हिस्सा बनो। स्टे पॉजिटिव, डॉट गिव अप।
7: हां जी सत श्री अकाल सारे नु, मैं तुहाडा अपना हिम्मत बंधु ते तुसी सुन रहे हो रेडियो स्पाइक।
8: साथियों पंजाब के हालात जिहड़े ने वह काफ़ी जिहड़े ने कह लो कि खुशगवार तो असी कह नहीं सकते, लेकिन नासाजरी असी कह नहीं सकते, लेकिन अजीबो गरीब जिहड़े ने बने पए ने, जिस दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिहड़ी है ये अक्सर हर रोज़ हुण इस दे उपर जिहड़े सवाल खड़े हो रहे ने। और ये जिहड़ा मुद्दा जिहड़ा है ये हुण पंजाब दा निकल के जिहड़ा है ये पंजाब तो बाहर भी जिहड़ा है पूरे भारत दे विच भी इस दे उपर हुण सवाल होण लग गए ने ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी इस दे उपर सवाल होण लगे ने। पंजाब दे विच जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिहड़ी है जिस तरीके नाल खराब होंदी जा रही है, और इधर जिहड़ी है पंजाब सरकार जिहड़ी है जिन्हां ने समय सिर पहलां जेकर कारवाइयां कीतियां हुंदियां, जेकर ये ढिल्ला मठा ना वरतियां हुंदियां, जेकर इन्हां ने अपना जिहड़े असली जिम्मेवारी समझी हुंदी ते पुलिस नूं सही कम्मे लाया हुंदा रादर दैन अपनियां आओ भगतां करन लई ते अपने जिहड़े है जिहड़ियां मनमर्जियां चलाउण दे लई, ते जेकर सही कम्मे लाया हुंदा तां पंजाब दे जिहड़े हालात ने उह इन्नी तेज़ी दे नाल विगड़दे नहीं। और हुण जिहड़े है उह इत्थों तक जिहड़ा हो गया सितम ज़रीफ़ी के जिहड़ा सालां दे विच ही पंजाब दा जिहड़ा वह ग्राफ जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके जिहड़ा बहुत ज़्यादा जिहड़ा विगड़दा होया नज़र आ रहा। हर रोज़ आए दिन जिहड़ियां वह बहुत सारियां जिहड़ियां वारदातां दीआं घटनावां जिहड़ियां ने, लुट्टां खोहां दीआं घटनावां जिहड़ियां ते फरौतियां दीआं घटनावां हर रोज़ ही असीं सुणदे रहिंदे हां। सो कल भी पता लग्गिया कि कल भी कुछ अजिहीआं घटनावां होईआं ने इत्थे भी तरन तारन नेड़े जिहड़ा है तरन तारन दे विच भी जिहड़ा इत्थे कुछ जिहड़ियां बंदूकधारियों वल्लों जिहड़ियां गोदाम दे बाहर भी जिहड़ियां पोल्ट्री फार्म दे बाहर जिहड़ियां ते ब्रीडिंग फार्म दे बाहर जिहड़ियां इत्थे गोलियां जिहड़ियां चलाईआं गईआं शरेआम जिहड़ियां गोलियां चलाईआं गईआं। सो इन्हां दी CCTV फुटेज भी जिहड़ी है उह चल रही है। एक दिन पहलां जिहड़ा पंजाब दे विच धमाके हो के हटे ने जिहड़े कि जलंधर दे विच भी होए ने BSF जिहड़े कैंप दे बाहर ते अमृतसर दे विच भी होए ने खासा दे नेड़े। सो बहुत सारे सवाल जिहड़े खड़े हुंदे ने ते साडे मानयोग मुख मंत्री साहब जिहड़े इत्थे ये ब्लेम गेम खेड रहे ने, कहिंदे ने कि भाजपा जिहड़ी है उह इत्थे धमाके करा रही है। सो इस दे बजाए कि जिहड़ा स्थिति नूं गंभीरता दे नाल लैके जिहड़ा इस नूं नजिठिया जावे। और लेकिन दूजे पासे जिहड़े पंजाब दे DGP गौरव यादव साहब ने वह कहिंदे ने कि इहदे विच पाकिस्तान दा हत्थ है, इहदे विच ISI दा हत्थ है। सो DGP साहब जिहड़ी गल होर कह रहे ने ते साडे माणयोग मुख मंत्री साहब गल जिहड़ी है होर कह रहे ने। सो पहलां आपस दे विच सलाह सलूक कर लिया करो कि किन्ने किहड़ी स्टेटमेंट देनी है। ते इधर जिहड़ा साथीओ इक जिहड़ा होर कल घटनाक्रम वापरिया तरन तारण दे विच जिहड़ा इक होर एनकाउंटर पुलिस दे वल्लों कीता गया ते इत्थे चार जिहड़े गैंगस्टर इन्हां ने दस्सिया कि उन्हां नूं गिरफ़्तार किया गया। जिहड़े ये गैंगस्टर गिरफ़्तार किए गए ने इन्हां दे नाम जिहड़े ने उह भी पुलिस वल्लों जारी किए गए ने ते पुलिस ने दस्सिया कि गुरदासपुर पुलिस नूं जिहड़ी गुप्त सूचना मिली सी इस दे आधार ते जिहड़ी इह कारवाई कीती ते इस दे दरम्यान पुलिस ते अपराधियों दे विचकार गोली भी चली ते पुलिस दी टीम ने जिहड़ा मुलाज़मां नूं घेरिया मुलज़मां नूं जिहड़ा इन्हां ने घेरिया ने मुलाज़मां ने तां इन्हां ने जिहड़ी है ये पुलिस ते ही फायरिंग करके भज्जण दी कोशिश कीती। सो हर वार जिहड़ी सेम स्क्रिप्ट हुंदी है जी। सो इस दे विच इन्हां ने दस्सिया कि बाद विच जिहड़ा पुलिस दे वल्लों जिहड़ी ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਹਿਮਾ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ, ਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ

0: ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਖਰੀ ਖਰੀ ਸਲਾਹ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਾਰਕੋਰਟਸ ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਐਲਟਰਸ ਨਵ ਢਿੱਲੋਂ 0223049224 ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਪਾਂਗਲੀ 0210564387।
1: अगर तुसी बीमारी नु जड़ तो खत्म करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि तुसी होम्योपैथी इलाज की विधि अपनाओ। ऑकलैंड विच होम्योपैथी दे मशहूर डॉक्टर डॉक्टर प्रीत कई सालों तो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। डॉक्टर प्रीत गोल्ड मेडलिस्ट ने हर तरह दीयां बीमारियां दा पक्का इलाज करवाउण लई अते प्रोफेशनल सर्विस लई अज ही संपर्क करो डॉक्टर प्रीत नु 2781106 ते या फिर 02112563563 ते या विजिट करो 415 ग्रेट साउथ रोड पपटोट।
2: ओ यार अल्कोहल लाइसेंस अप्लाई करना हेडेक बन गया।
3: स्ट्रेस ना ले, परविंदर डेविस लॉ है ना, न्यू लाइसेंस रिन्यूअल्स ते सारे अल्कोहल लाइसेंसिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज दी प्रॉपर हैंडलिंग।
4: इवेंट और टेंपरेरी अल्कोहल लाइसेंस भी।
3: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ, अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 6421214091।
5: वायर नवी कार बड़ी फुर्ती मारी।
6: आहो, बैंक वालों ता टाइम लगना सी, पर मैं ता लॉजिक फाइनेंस वाले गुरु कंडोला नु कॉल लाई ते 24 घंटे च लोन अप्रूव हो गया।
5: कार लोन या पर्सनल लोन, जस्ट कॉल अवे, गुरु कंडोला मेक्स इट सो इजी। कॉल 0800564424।
7: कारोबार बताना होवे या टैक्स रिटर्न फाइल कराना होवे, युगराज सिंह माहिल CA ते भरोसा करो। टैक्स होवे या बिजनेस, युगराज सिंह माहिल नाल सब कुछ है आसान।
8: ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दे मेंबर ने।
7: इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न, सालाना रिपोर्ट, तनखा एंड BAYE। नवा बिजनेस शुरू करना, कारोबार की सलाह, लोन एंड बैंक रिपोर्ट, इमिग्रेशन ले फाइनेंस पेपर, IRD ऑडिट, टैक्स तो बिजनेस ग्रोथ तक।
8: युगराज सिंह माहिल चार्टर्ड अकाउंटेंट है थोड़े नाल। कॉल करो 0210234669।
9: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਕੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ 24/7, 365.

सरन जाम लाग पौजल तरन के जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ जब तब संयम तरम ना कुमाया सेवा साध न जान्या हर राया कौन नानक हम नीच कर्मा।

पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुर्सबै तुम कावो, आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर इच्छा नज कर दै करिया, सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरिया स्तुजो करियो रच्छा।

चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा दर्द तब दे अपारा जब आकर कर्त हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ पेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहब सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तजकीनी उत्पुज खान बहु रजनी कहो फू राजा हर बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव आवरछा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दूत जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुख्त है मरे पुरख जवन पाक परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रच्छा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो हृदय।

तब ते को आख तेरे निया न्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र बे सब है बहु पेक कह हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोय बखान्यो दोइरा सगल द्वार को छाड़ कह गयो त्वारो द्वार बाएं गए की लाज अस गोविंदास त्वार एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली मल्ला दी जानंद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार प्रिया शब्द गावने आईया सब दोता गावो हरि कीरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नारो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारे सब सुवारना समनांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे सहबा क्या नहीं करते रह करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिव सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुआईया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु वितो जिस दिया ए वड़ियाईया कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला चित कर तारिया पंच दूत दवस कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तुजन को सह नाम हर कह लागे कह नानक तैसुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद

संत साजन तै सरसे पूरे गुरते जाने। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रिया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे। मधामनी महला पंजवां। हाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। ए

तन मन थी वे हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोय नाहे ओथे तेरी रख अग्नि उदरमाए सुन कै जम कै दूत नाए तेरे छड़ जा पौजल बिखमसदा गुरसब दी पार पाए जिन को लगी प्यास अमृत से ही खाए काल मैं ए हो पुन गुण गोविंद गाए सब सैनु कृपाल समाले सासा बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आए। श्लोक महला पंजवा अंतर गुरु आराधना जेवा जब गुरनाओ नेत्री सतगुर पेखना सर्वनी सुनना गुरनाओ।

जग में उत्तम काढ़िया विरले के भला पंजवा रखे रखन हार आप उभारियन गुर की पैरी पाए काय सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साथ जिना कह संग पौजल तारियन ताकत निंदक दुष्ट खिनमाए बिदारियन तिस साहेब कीते नानक मने मां जिस सिमरत सुख हो सगले तू।

0: फ्लैट बुश पापा कूरा विच अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तो बाद हुन डीएच सुपरमार्केट आ गया हैंडरसन विच हुन तुहाडियां रोज दियां जरूरतां होण या इंडियन फ्लेवर्स दी क्रेविंग फ्रेश इंडियन वेजिटेबल्स ऑथेंटिक स्पाइसेस ग्रोसरी ते डेली एसेंशियल्स सब कुछ मिलेगा इक्की छत थले ओपनिंग दे मौके ते मिल रहे ने स्पेशल ऑफर्स ते ग्रेट प्राइसेस हुन शॉपिंग होवेगी होर आसान क्योंकि तुहाडा अपना इंडियन ग्रोसरी स्टोर डीएच सुपरमार्केट हुन तुहाडे होर भी नेड़े है डीएच सुपरमार्केट नंबर 5 मोजल एव हैंडरसन इना दी नवी ब्रांच खुल चुकी है
1: ओए राकेश की होया
2: ओए यार मेनू सच्ची ओदी बहुत याद आउंदी है इस विदेश दी धरती ते सच्ची मैं ओनु बहुत मिस कर रहा
1: ओए उदास ना हो दस मेनू केदी याद आ रही है तेनू
2: इंडियन खाने दी
1: कमलिया बस इयो गल है चल आपा चलिए चावलास इंडियन रेस्टोरेंट जिथे वेज ते नॉन वेज विच बहुत सारी बेस्ट फूड डिशेस अवेलेबल ने
2: पर कार किथे खड़ी करांगे
1: घबरा ना उथे पार्किंग ले भी वड्डी स्पेस है
3: चावलास इंडियन रेस्टोरेंट 5613615 ग्रेट साउथ रोड मनुकाओ अपने फंक्शंस पे बुकिंग ले कॉल 0926231322
4: चावलास लुधियाना वाले दी ब्रांच हुन न्यूजीलैंड दे विच भी ए फूड बिना किसी फूड कलर तो तैयार करदे ने
5: जदों दे साडे लकी दे एजेंट ने पैसे मारे आ उदों दा साडा ता इमीग्रेशन वालेयां तो भरोसा ही उठ गया
6: पर किवियाना इमीग्रेशन उपर तुहाडा भरोसा हमेशा बनया रहेगा क्योंकि ए काम करदे ने पूरी इंटीग्रिटी ते पूरी ट्रांसपेरेंसी नाल चाहे तुसी अप्लाई करनी होवे एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन या फिर तुसी अप्लाई करना होवे किसी भी तरह दा वीजा जिद्दां कि वर्क वीजा स्टूडेंट वीजा विजिटर वीजा पार्टनरशिप वीजा आज ही संपर्क करो पवनदीप सिंह एंड टीम एट किवियाना इमीग्रेशन कॉल 0220955218 0223288116
7: जायदाद दा फैसला वड्डा हुंदा है असीं तुहानू दिंदे हां सही जायदाद दी सही जानकारी ते खरी खरी सलाह ना सिर्फ वेचना ना के खरीदना सिर्फ रिश्ता बनाउणा ईमानदारी अते भरोसे नाल अपने पेशेवर रियल एस्टेट सलाहकार नूं चुणो कॉल करो हारकोर्ट्स मैनरेवा दे भरोसेमंद रियलटर्स नव ढल्लों 0223049224 या फिर दलजिंदर पांगली 0210564387

0: जिंदगी दा सच है, एक दिन हर किसी नूं इस दुनिया तो रुखसत होना हुंदा है,
1: पर उस वेले सब तो जरूरी हुंदा है इज्जत मर्यादा ते पूरी सेवा दे नाल अंतिम विदाई।
0: ऑकलैंड विच सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज लेके आए ने पंजाबी फ्यूनरल पैकेजेस, जिथे ट्रांसफर तो लेके एम्बामिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, क्रीमेशन ते डेथ सर्टिफिकेट तक सारी जिम्मेदारी ओ संभालदे ने। टोटल पैकेज सिर्फ $4,299 तो शुरू।
2: उन्हें संपर्क करो शैलेन सिंह
3: 0272-929-776। सिंह्स फ्यूनरल सर्विसेज, अंतिम सफर विच पूरी
4: ध्यान नाल सुनो। साउथ ऑकलैंड वाले हो, साउथ ऑकलैंड मोटर्स लेके आया है बिगेस्ट सेल एवर। हुन गड्डियां दी कीमतां ते वड्डा वार, बिग डील्स, बिग चॉइस, बिग सेविंग्स, हर बजट दी गड्डी लई वड्डी छूट ते बेमिसाल बचत। ए मौका हथों ना जान दियो। 11 मई तो 17 मई तक ही साउथ ऑकलैंड मोटर्स मैनको बॉटली अते पुकी कोई विखे अपनी मनपसंद दी गड्डी घरे ले जाओ सब तो वधिया डील्स दे नाल। विजिट करो southauckland motors.co.nz ते।
5: मैं अपना वीजा इमिग्रेशन स्टार तो करवाया या। इना ने मेरा पेपर वर्क इतना सॉलिड किया कि मेरा वीजा चार्ट अप्रूव हो गया।
6: जो कहंदे ने उही करदे ने, इमिग्रेशन स्टार वाले भरोसे नाल चलदे ने। पिछले 8 सालों तो मनाकाओ साउथ ऑकलैंड ची तुहाडी सेवा च हाजिर ते माहिर ने ए एम्प्लॉयर एक्रीडिटेशन,
5: जॉब चेक एप्लीकेशन, एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा, विजिटर वीजा, स्किल्ड माइग्रेंट रेसिडेंट और वर्क टू रेसिडेंट वीजा अंडर ग्रीन लिस्ट, सेक्शन 61 रिक्वेस्ट वर्गियां सेवावां लई संपर्क करो इमिग्रेशन स्टार दे लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर
6: विनोद जुनेजा नु। ओवर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस बी प्रेजेंटेड इंक्लूडिंग सक्सेसफुल ग्रांट ऑफ रिफ्यूजी स्टेटस। फर्स्ट कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। आज ही कॉल करो 0225928077 और 0221593477।
7: बस फेसबुक इंस्टा ते रील्स देखी जाओ, इंश्योरेंस ना करायो।
8: ओ डार्लिंग फिकर नॉट, आपा आज ही जाना इंस्टा श्योर। इंस्टा श्योर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर डीलिंग इन ऑल काइंड ऑफ पर्सनल इंश्योरेंस सर्विसेज,
7: लाइफ, मेडिकल, ट्रॉमा, आईपी एटसेट्रा फ्रॉम इयर्स। इफ यू आर टायर्ड ऑफ ओवरपेइंग योर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस और लुकिंग फॉर बेस्ट ऑप्शन, गेट इन टच टुडे। कॉल 6422-698-7837। इंस्टा श्योर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड।
9: जदों जिंदगी कानूनी चुनौतियां पेश करती है, तां ब्रूक लॉ दे मनिंदर कौर सिद्धू अते उसदी टीम दी महारता ते भरोसा करो।
10: फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, ट्रस्ट, विल्स, एस्टेट एंड इमिग्रेशन लॉ। कानून विच मनिंदर कौर सिद्धू 18 सालों तो वध अनुभव नाल, असीं तुहानू हर कदम ते विश्वास नाल मदद करदे हां।
9: मनिंदर कौर सिद्धू अते उनां दी टीम तुहाडे कानूनी मामलां विच विश्वासयोग साथी।
10: brooklaw.co.nz ते जाओ जां 07838338385 ते कॉल करो।

0: इस सवाल होणगे जिस दे विच खास करके वोटिंग राइट्स स्ट्रक्चर सरकार दा बिल ऑफ राइट्स ते होर काफ़ी इस दे विच सवाल रखे जाणगे, खास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इसका हिस्सा रहेगी। अगली खबर दे विच अनएम्प्लॉयमेंट जिहड़ी है होर वर्स होएगी, फ्यूल क्राइसिस का इंपैक्ट असर जिहड़ा महसूस होना शुरू हो जाएगा, 5.3% जिहड़ा 3 महीनों दे विच रहेगा, ते इस नूं लै टोटल 163,000 लोग अनएम्प्लॉयड ने। पोलिटिकल रिस्क दे रिएक्शन दे विच स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने एक्स कर दिता है पोलिटिकल रिस्क, इस नूं लै 1989 नूं लै बहुत वड्डा ये चेंज जिहड़ा कीता गया। एक पंजाबी मूल दे हैरी सिंह ने 15 फ्रॉड आइडिया बना के कोविड दे दौरान कॉम्पनसेशन लिया, इस दे विच अपने मरे हुए बाप दी भी आईडी उन्होंने बत ली, तो डिसऑनेस्टी दिया एप्लीकेशन दे विच उन्होंने मैनका कोर्ट दे विच खड़ा करता गया, 224,000 इन्हां रेवन्यू वापस करके उत्ते उन्होंने फाइन देने पैणगे। ही दे विच ऑल वाइट्स जिहड़े ने हेटी दे नाल खेडणगे वर्ल्ड कप फ्रेंडली मैच ते भी खबर आई थी, समाप्त करते हैं, अपना ख्याल रखना, सत श्री अकाल।
1: I said empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend, my friend, my friend.

0: बड़ी खबर आ रही है.
1: Well, in Italy, nearly 800 people have died within the last 24 hours.
0: याद कीजिए चौथी जो मौत हुई थी हिंदुस्तान में वो नवा शहर के बुजुर्ग की थी.
2: इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर भारत में तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं.
3: जरा सोचिए.

0: रेडियो स्पाइस 88 FM।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: दारू पीना सेहत लई हानिकारक है। अपना सारिया का फर्ज बनता है भी आप दारू नू जड़ों खत्म कर दिए।
1: उस्ताद जी ओह किदां
2: पीके।

असंख मूर्ख अंत घोर असंख चोर राम खोर असंख अमर कर जाहें जोर असंख गल वढ़ हत्या कमाहें असंख पापी पाप कर जाहें असंख कूड़े यार कूड़े फिराहें असंख मलेच मल पख खाएं असंख निंदक सिर करहें भार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै सही भली कार।

जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़िए शब्द।

हैं, बंद हैं, निर्बूज हैं, सूझ हैं, काल हैं, जाल हैं, अलाह हैं, जा है, अनंत हैं, मांत हैं, अलीक हैं, निर्श्रीक हैं, निर्लंब हैं, सम हैं, आगम हैं, जम हैं, भूत हैं, छूत हैं।

इंद्रान इंद्रपालान्वान रंकान रंकालान काल अन्भुदंगाबाबंग गतमित पार गुणगुणदार मुनगन प्रणाम निर्वैनिकाम अतुत प्रचंड मित गत खंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाडे अंडन वाडे चाची।

चत्र चक्र कर्ता, चत्र चक्र हर्ता, चत्र चक्र दाने, चत्र चक्र जाने, चत्र चक्र वर्ती, चत्र चक्र प्रति, चत्र चक्र पाले, चत्र चक्र काले, चत्र चक्र पासे, चत्र चक्र वासे, चत्र चक्र मानिया, चत्र चक्र दानिया, चत्र चाची छंद, ना सत्राय ना मित्राय ना परमंग ना पित्राय ना करमंग ना काये अजन्मंग जाये, ना चित्राय ना मित्राय पर पवित्राय प्रतिशय दिशय दृश्य कृषय भगति चंद तो प्रसाद करते कि अच्छिज देशय के आपिज पेशय के आगंज कर्म के आबिंज परम के आबिज लोक है के आदित्य शोके के अवधूत वर्ण की विभूत करने के राजम प्रभा है कि धर्मंग तु जहाँ है के अशोक वर्ण के सर्वा परण है कि जगतंग कृति है कि चतरंग क्षति है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुभव

कि कर्मं करीम हैं, कि सर्वं कली हैं, कि सर्वं दली हैं, कि सर्वत्र मान्य हैं, कि सर्वत्र दान्य हैं, कि सर्वत्र गौण हैं, कि सर्वत्र पौन हैं, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र साज है, कि सर्वत्र दीन है, कि सर्वत्र लीन है, कि सर्वत्र जा हो, कि सर्वत्र पा हो, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाल है, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र पेखी, सर्वत्र काज है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र शोक है, कि सर्वत्र पोख है, कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र पाण है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, कि सर्वत्र जाप है, कि सर्वत्र थाप है, कि सर्वत्र पान है, कि सर्वत्र मान है, कि सर्वत्र इंद्र है, कि सर्वत्र चंद्र है, कि सर्वं कलीम है, कि परम फहीम है, कि आकल अलाम है, कि साहब कलाम है, कि हुसनल वजू हैं, तमाम रजू हैं, हमेशो सलाम है, सलीक मुदाम है, गनीमुल शिकस्त है, गरीबुल है, बिलंदुन मकान है, जमीन उल जमान है, तमीजुल तमाम है, रजू उल निदान है, हरीफ उल अजीम है, रजाय के कीन है, अनेक उल तरंग हैं, भेद हैं, भंग हैं, अजीजुल निवाज हैं, गनीमुल खिराज हैं, निरुकत स्वरूप हैं, त्रिमुकत विभूत हैं, प्रभुकत प्रवाह हैं, सुजुग सुदा हैं, सदैव स्वरूप हैं, भेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तो सलाम हैं, सदैव काम हैं, निर्वाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, अहंगाद रूप है, ना स्वरूप है, अनंगी नाम त्रिवंगी द्रकामे त्रिवर्गंत वादे गंजे गादे सुपंग सर्व भागे सुसर्वानरागे त्रिभक स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं, कि नरकं प्रणास हैं, पृथ्वी उपवास हैं, निरुक्त प्रवाह हैं, सदैव सदा हैं, विभुक्त स्वरूप हैं, परयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुक्त प्रवाह हैं, अनुक स्वरूप

अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंतो प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग तर्मं, सर्वंग युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंतो प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशी, अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते, परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते, अनंगी नाम त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पोत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय, निरसाकं सरीक हैं, मितोमिक हैं, सदैव प्रवाह हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगति चंतो प्रसाद, कि जाहर जहूर हैं, कि हाजर हजूर हैं, हमेशा सलाम है, समस्तुल कलाम हैं, कि साहब दिमाग हैं, कि उष्णल चिराग हैं, कि कामल करीम हैं, कि राजक रहीम हैं, कि रोजी दहिंद हैं, कि राजक रहिंद हैं, करीमुल कमाल हैं, कि हुस्नल जमाल हैं।

खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकन हैं, रासुल फिकन हैं, कलंकंग प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब करा हैं, के नरकंग प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, के सरबुल गमन हैं, महसुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परम परमीश है, समस्तुल अदीस हैं, अदेसुल अलेख हैं, मेसुल बेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, कि जो रजमाल हैं, क्या चलम प्रकाश है, क्या अमितो सुभाष हैं, क्या जब स्वरूप हैं, क्या अमितो विभूत हैं, क्या अमितो पसा हैं, क्या आत्म प्रभा हैं, क्या चलंग अनंग है, क्या अमितो भंग है, मत बार संतो प्रसाद, मुनमन प्रणाम गुनगुन दाम, हर बर गंज हर नर प्रभंज, अन गण प्रणाम मुनमन सलाम, हर नर खन पर नर मंड, अनुभव नाश मुनमन प्रकाश, गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम, अंशिज अंग आसन भंग, उपमा पार गतमिदुदार, जल थल मंड दिव्य सुपंड, जल थल महान दिव्य स्व्यंत, अनुभव ना तत्तुरास, आजान भाव एक कैसे दाओ, औं करयात कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबरकार, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अंशिज गाद आजिज नाबाद, अंजज गाद अनरज बात, अनटुट भंडार अनठट पार, आडिट धर्म अत टीट कर्म, अनबरण अनंत दाता मंत, हरि बोल मना छंद तो प्रसाद, करुणालय हैं हर काले हैं, खलखंडन हैं मैं मंडन हैं, जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं, कलकारण हैं सर्ववारण हैं, त्रित केतरण हैं जगेकरण हैं, मन मान्य हैं जगजान्य हैं, सर्वंपर हैं सर्वंकर हैं, सर्वपाश्य हैं सर्वनाश्य हैं, करुणाकर हैं विश्वंबर हैं, सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस है खलखंडस है, प्रति पर हैं करुणाकर हैं, अजपा जप हैं, थपा थप हैं, कृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं, अमृतामृत हैं, करुणाकृत हैं, अकृताकृत हैं, धरणी देते हैं, अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजबाकित हैं, अमितामित हैं, नरनायक हैं, खल कायक हैं, विश्वंबर हैं करुणालय हैं, नृपनायप हैं सर्वपायक हैं, पवभंजन हैं अर्गंजन हैं, रक्तापन हैं जपजापन हैं, अकलंकृत हैं सर्वाकृत कर्ताकर हैं, हरतार हैं, परमात्म हैं सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूर्जे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बिंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग ताम संग सात रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे।

गुंजत गूढ़ ज्ञान की सुंदर इंसत ही है राज जारे भूत पविक भवान के भूपत कौन गणे नहीं जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नहान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पिख है पवन आहार जती जतार सवै सवै चार हजार के देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिबाह दुरंत पास सासना दुर्जान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत मंख लैना हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरे यार अविचारे सार की तार बछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहेब श्री सबको सरनायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निशाचर भूत पवित भवान जपेंगे जीव जीते जल मैं थल मैं पली पल मैं सब था तो पेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के वो पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र राधव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजातिक दान अनेक सोम प्रसाद बनाएंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिपत अंत फसे जम फास फरेंगे जय नर श्रीपत के।

सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहूं लै पहन पूज तरे हो सिर, काहूं लै लिंग गरे लटकायो, काहूं लख्यो रवाची दिशा मह, काहूं पचा को शीश नवायो। कौ बतान को पूजत है पस कौ मरतान को पूजन तायो, कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। कौ बतान को पूजत है पस।

0: पर सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जी अस तुझता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित वै मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रिष्ट रित काला कृपा दृष्ट तन जाए न हर हो ताके ताप तनक मोहर हो
1: रिद सिद्ध कर्मो सो हुई दुष्ट छाछ।

निराली, ज्यों तू चला है तिव चलै स्वामी। और क्या जाना गुर तेरे, जीव तू चला है तिवै चला, जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाहे, से हर सदा त्यावे, जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे, कह नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिवें चलावे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला, सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मनुष्य जिन धुरो लिख आया।

प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत कनेरे,

सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी, प्रभ कै सिमरन नह चलयासन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे सेजन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन शरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जती दाते, हर सिमरन नीच चहों कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पा।

मन ऊहा नाम तेरै संग सहाई। जय महाभ्यान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरै चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनहे चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे।

सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख नाम बुझावै हर का नाम जपत अगावै जह मार्ग एहो जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याई नानु गुरमुख परम गत पाई छूटत नहीं कोट लखबाही नाम जप

हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछनाए वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओठ स्तानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की

नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वडभागी पाईऐ, संत की सेवा नाम त्याईऐ, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शस्त्र सिमृत बख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म करे।

साध संग एहो में शोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की शरणी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तां कै बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जांका मिटे अभिमान आपस को जो जाने।

अष्टपदी दस वस्तु लै पाछे पावे एक वस्त कारण बेखोट गुआवे एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा को कहां करे जिस ठाकर से ना ही चारा ताको की जाए सद नमस्कारा चांके मन लागा प्रभ मीठा।

कछबहर शाहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोबे बहर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस तिस आ गए राख।